फलत फलत होहे दोहे सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहा, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होव हमीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सबते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म,

गया खिन महवेश करह नटुआ ज्यो मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भर।

ये कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

आई। सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई। परम ना भूलो सतगुर सेवहो मन राख।

गवाई। त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम है बिन सजाई। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

अनंत तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा।

शांत। प्रभ बिपत निवारण तिस बिने अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे,

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बार है अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

है बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।

जाए पुछहो सिमरत शास्त्र व्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पहाणे चलन अपने नित झूठ।

पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजे भाए बोले, दूजे भाए सदा दुख है नित नीर विरोले। गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोले, अंतर प्रगास

पंजवां कबीरा हमरा को नहीं, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के ना है, जिन हो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफल्यो बिरख सुहा।

सुत संजम रावसस गहने देउ रे सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेउ रे निचार तार चुवै अत निर्मल

स्वार्थी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी।

अनहद बजहै शब्द अनहद बजहै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाउ।

छोड़ सकल सियाण पाव मिल साध त्याग गुमान, छोड़ सकल सियाण पाव मिल साध त्याग गुमान। अवर

है दूजै भरम भुलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग

यो भव जल जगत शब्द गुर तरियै अंतर की दुविधा अंतर जरियै पंच बाण ले जम कौ मारै गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइय शब्द सुरत बिन

पुरख मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब

दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावहे, दुर्मत का दो राहा है। पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहा है। मेरा प्रभु साचा असुर संहारण।

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हरस्यो सदही रहे समाए, गुर कृपा ते मिले वडियाई, होमै रोग ना ताहा हे। रस कस खाए, रस कस खाए, पिंड बधाए, भेख करै गुर शब्द।

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएं दार। काया विच तोटा काया विच लाह।

आनंदन गुण रव है दिन राती, आनंदन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा भाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आनंदन सदा हर

कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया शुद्ध है शब्द विचार है।

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम भौ भागै।

गुण निदान मंतन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

रहाओ, कर अनुग्रहो आप राखियो, नह उपज पाओ बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नै संसार।

बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

गुरमुख जाता से जग मह काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी

प्रहलाद आप विगड़िया, प्रहलाद आप विगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग करता

जाने दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहा। आन दिन भगत कर है दिन राती दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच

आद तूर मुख परी स्नान कियो अठसठ सुरसरी। हम मूर्ख को हर कृपा करी जन नानक तारे ओ तारण हरी। पैरों महला चौथा सोकृत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली कर कृपा मिल हो सत्संगत। टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली।

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम

रहाओ। काल युग में है एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुरु सेव।

ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरहै मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करहै तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भव।

जिस नाम हृदय तिस वट परवारा, नाम बिना मन मुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

सुन सहज मह बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तनसाव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरुष

कूप गोज खिन काढ़े, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़े, त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिन्हें ऐसा सतगुर साध ना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ

खेल तुझ महे समाहे, ज्यों पावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

यह मृतक मड़ा है शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसया राम नाम गुर उदक चो आया फिर हरिया हो वारसया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजया।

सहज अवल तूड़मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

तिस अर्पण सब सुख जाई, एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती, सेवों दिन रह नाई, मान अभिमान हो।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों। अन दिन भगत सुहावी, मुक्त भये गुरदर्श दिखाया, जोग जोग भगत सुभावी।

तीर्थ अड़सठ मज्जननाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरै

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौजल जगत तरावै रहाओ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले।

कहो नानक मेरो बनयो सुहागो पात सोभा भले अचारे। मलार महला पंजवां। प्रीतम साचा नाम त्याए

हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे, हर जप जपे।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावे गो, जो जो भगत होए सो पूजहो, परमन परम चुकावे गो, जात न जात देख मत परम हो, सुख जनक